एको पाई मीत एक एको मात पिता एक सकी मन एक है जिन जियो पिंड दिता सुप्रभ मनो न बिसरै जिन सब वस के सब केश वस किता तारे को बहरे को धांत नंतर आप जी जंत सब जिन किए आठ पैर तिस जाप एक से तीरथया न हो भी सोग संताप पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोए जियो पिंड सब केश है जियो पिंड सब तिस का जो तिस पावे सोए गुर पूरा पूरा पया जप नानक सच्चा सोए श्री राग महला पंजवा जिन्ना सतगुर सो चित लाया से पूरे प्रधान जिन को आप दयाल होए तिन उपजे मन ज्ञान जिन को मस्तक लिखया तिन पाया हर नाम मन मेरे एको नाम ते आए सर्व सुखा सुख उपजाए दरगह पैंदा जाए राव जन्म मरण का पौ गया पाओ भगत गोपाल साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल जन्म मरण की मलकटी है गुरदर्शन देखने हाल थान थनंतर दब रहे पार ब्रह्म प्रभ सोए सबना दाता एक है दूजा नाही कोए ते सरनाई छुट्टी है कीता लुड़े सोए जिन मानो बसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान तनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान जिन्नी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुरबान श्री राग महला पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया हार सुख वसिया मन आई अंतर जोत प्रगासी आए कस्यों लिव लाई मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखिया पाई गुण गोविंद नित गावणी।

हर बिन दूजा को नहीं, एको नाम ते आई रहाउ, कीमत कहण न जाई है सागर गुणी अथा। वडभागी मल संगति, सच्चा शब्द विसाह, कर सेवा सुख सागर है।

दुख सहे सुख सहज आनंद रासु जन नानक हर गुण गाओ श्री राग महला पंजवां सोई साच सौन सोए जित जपिय हर नाउ चरण कमल गोर तन दिया मिलन सावे थाउ साची पूंजी सच संज मऊ आठ पैर गुण गाओ कर कृपा प्रभ भेटिया मरण ना गुण जाओ मेरे मन हार पज सदार एक रंग कट कट अंतर दब रहे।

संत जन सुन मेरे भाई हो सच्चा नाम संभाल तोसा बंदो जी का उठे नाल गुर पूरे ते पाई है अपनी नजर में हाल कर्म प्राप्त ते संबंध जी का कर्म प्राप्त तस होवे जिस कनो होए दयाल मेरे मान गुर जीवड़ वरना कोई दूजा थाओं ना कोस जाए गुर मेले सच सोई रहाओ सगल पदार्थ तस मिलाए।

गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाउ। हर जन केवड़ भाग बडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिलै तृपता सह, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिख्या लिखास। तन तन सतसंगत

थैल पत्थर में जंतु पाए तांका रिजक आगे कर दरिया। मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया।

मन में है सिमरन करया सब निधान दस अष्ट सुधान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइय तेरा अंत न अपार वरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख।

सुखमय सुखवासी से मुकत भए जिन हर जाया जी तैन टूटी जम की फासी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ ते आया जी।

सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया।

सबना गला समरथ स्वामी शोक मन विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही करते रहे, करता तेरा सब किश है जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सचे साहिब क्या नाही करते रहे, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मनाए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया।

साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तद कर सुभा गए, कर सुभा गए शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस किते, काल कंटक मारिया।

किया वही रास अकाश कथा जन जानी जाको आई सुई रहा जो हर गुर के मने बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे और ना हो जो तेरा अंतर जामी पुरख विदाते शब्द।

प्यारी सात संगत जी, जंग लड़ी जा मोर्चा प्या लाउणा, सदा सिंघा ने खून नाल चट कीती, सरकार बाबर दी सी जा अंग्रेजा दी, दसो किने सिंघा नाल कट कीती, साडा पट जमूरा नाल मास खादा, जिने पीती सिंघा दी रत पीती, पर बख्शिया नी मक्खन बराड़ा ओ बंदा जिने हरमंदर साहब वल मैली अख कीती।

0: ऐसे मोह दे टिकड़ विच फस गए, लखां डुब गए, अज भी डुब रहे। ठीक है, रहना घर की है, रहना बच्चियां की है, परिवार नाल मोह होवे, परिवार विच रहिंदिआं साडा गुरु नाल भी मोह होवे। अज परिवार पिछे, बच्चिया पिछे, कुर्सी पिछे असी धर्म छड्डन नूं ते तैयार हां, धर्म पिछे असी संसार छड्डन नूं तैयार हां, पर बड़े ने जिहड़े छातियां तान के छड़ गए, धर्म पिछे लड़ गए, सीधियां प्राप्त कर गए, धर्म कमाया, धर्म नाल प्यार रहिंदे घर विच ने, मन गुरुद्वारे रहिंदा को सतनाम
1: श्री वाहिगुरु गुरु,
0: रहिंदे घर विच ने मन महापुरखां कोल ही, मन उथे। सुसात सिंह जी महाराज अज वेखिया गंदगी का कीड़ा बनया होया, मारिया जलदा चिट्टा, आत्मा सामने खलो गई, अज परिवार सारा वेखदा, हाथ जोड़ के खलो गया, महाराज मुक्त कर, बड़ा दुखी है, भटकदा फिरदा। महाराज कहिंदे तैनू इन्ना समझाया कि कहिंदा मैं ही मूर्ख हां, महाराज समझ नहीं आई, सतगुरु ते रोज ही समझाउंदा ने, मन मूर्ख मेरा ना समझे गुरबाणी समझावे, सतगुरु समझाउंदा ने, मन समझिया नहीं महाराज जी मेरा भुल हो गई, बस हुण बख्श लो, तार दिओ, कृपा कर दिओ। रो रहे महाराज कहिंदे बाबा तैनू मुक्त करनी आए, असी ते बार बार आउंदे रहे, तू ही पिछे नूं दौड़दे, साडे ते महाराज केडी कृपा कर गए, ठंडे बड्डे दी अमृत दी दात बख्श गए, पंज प्यारे प्यार पर प्यार होण, कहिंदे अमृत छक लो, अमृत धारी गलती करके भी जे किते भुल कर भी लै ना कोई, ते महाराज द्वारा उहनूं मनुखा शरीर दे दिंदे ने, 84 दे गेट च निकलदा कोई सपना, द्वारा जन्म, जन्म दा दुख ते है, माता दे गर्भ दा दुख है, जठरा अग्नि साड़ेगी फिर, पर फिर एक बार मौका मिल जाता अमृतधारी सिंह जिहड़ा गुरु वाला बने, उन्हें मौका फिर मिल जाता, नहीं तो 84 कट्टण वास्ते 7.5 अरब साल लगता, एक साल नहीं 7 साल नहीं कह रहे हो, 700 साल नहीं, 7,500 साल नहीं, 7.5 करोड़ साल नहीं, 1 लाख साल नहीं, 1 करोड़ साल नहीं, 1 अरब साल, 7.5 अरब साल भटकदा ही रहिंदा, फिर वह गल नहीं बनती, बड़ा लंबा चक्कर। 83,99,999 जूना हैं बाकी नखिद, इको ही मनुखा शरीर है, टोटल 84 लाख, एडा लंबा चक्कर पै जाना फिर मुड़ के गल नहीं बननी। दास ने कल भी अर्ज की सी, जिहड़ा लगे भरम वाला जिंदरा गुरां बाजो नहीं खुलना, इत ज्ञान की चाबी लैके पंज प्यारिया तो परमां दे जिंदरे खोलने, ते अज महाराज ने कृपा की आ गए, नाले रो रहा कहिंदा सच्चे पातशाह मेरा कट दिओ 84 वाला गेड़ा, मेरा 84 का गेड़ा कट दिओ, बार बार एहो बेनती। महाराज कहिंदे तेरे भले वास्ते ही आए हैं, हुण आत्मा चली है बैकुंठा नूं, ते जांदा जांदा अपने परिवार नूं आवाजा दिंदा, कहिंदा बचिओ रब आया वेख्यो, खाली ना रह जिओ, घर च गंगा आई है चुभा मार लिओ। आ महापुरखां ने भी आ गंगा ही लैके आंदी है इत्थे, उदम उपराला सारिआं प्रबंधकां दा अगवाई, योग अगवाई महापुरखां दीआं असीसां, ते हुण जे कोई इत्थे भी चुभा ना मारे ते फिर माड़ा ही भाग ने प्यारे, ते मैनूं पता लगा भी 170 के लगभग नाम आ गए ने अमृत छकण वास्ते। हाँ 180 प्राणियों के नाम, 180 के नाम आ गए, तो बेनती है भाई मन बनाओ, इतने ही कल अमृत संचार होना, आप जी जो इतने पहुंच जाओगे तो पता लग जाएगा भी कि जगह से किसी स्नान करके नवे जा सुचे बस्त्र पा के, नवे जा धोते हुए बस्त्र पा के, पांच ककार धारण करके भाई कल नूं पहुंचो, गुरु वाले बनो, सतगुरां दीआं ते महापुरखां दीआं खुशियां इस गल च ही ने, गुरु वाले बनो, नशियां दा त्याग करो, महापुरख इस गल ते ही खुश ने, असीसां ते सदा ही, दास ने कल भी अर्ज की ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰਕਾ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਚਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ

सच्चे की लिब उबरै बक्षे बक्षण हार जियो अनको की जय मित्रा खाक रल मर जाए जियो बहु रंग देख पुलाया पुल पुल आवे।

साजिया आपे थाप उथाप शब्द निवाजिया देही पसमर लाए ना जापी कह गया आपे रहया समाए सो विस्माद भया तू नाही प्रभ दूर जान है सब तू है गुरमुख वेख हदूर अंतर पी तू है मैं दीजै नाम निवास अंतर शांत हुए गुण गावे नानक दास सतगुर मत दे राग सूही महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद नामे ही ते सब किश होआ बिन सतगुर नाम ना जापै गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध ना जापै कौडी बदलै जन्म गवाया कीन सनाही आपै गुरमुख होवै ता एको जाने हम मैं दुख ना संतापै बलिहारी गुरे अपने विटो।

गुरमुख गावे गुरमुख बूजे गुरमुख शब्द बिचारी जियो पिंड सब गुरते उपजे गुरमुख कारज सुवारी मनमुख अंधा अंध कमावे बिख खटे संसारी माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुर अत प्यारी सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पाई साचा शब्द सिफत है साची

है साचा, साचा शब्द सुनाई। गुरमुख काले गुरमुख खटे, गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिपत साचे रंग राता, गुर कै सहज सुपाए। मनमुख सद ही कूड़ो बोले, बिख बीजे बिख खाए। जमकाल बादा तृष्णा दादा, दिन गुर कवन छाए। सच्चा तीरथ जित सत सर नावन, गुरमुख आप बुझाए। अठ सठ तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नाते मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मल लगे ना लाए। सच्ची सिफत सच्ची सलाह, पूरे गुर ते पाए। तन मन सब किश हर तिस केरा, दुरमत कहन ना जाए। हुक्म होवे ता निर्मल होवे, हमें विचों जाए। गुर की साखी सहजे चाखी, त्रिखना अग्न बुझाए। गुर कै शब्द राता सहजे माता, सहजे रहे आसमाए। हर का नाम सत कर जाने, गुर कै भाई प्यारी। सच्ची वडियाई गुर ते पाई, सच्चे नाई प्यारी। एको सच्चा सब मह वरतै, बिरला को विचारी। आपे मेल लए तां बख्शे, सच्ची भगत सवारी। सबो सच सच सच वरतै, गुरमुख कोई जाने। जम्मण मरना हुक्मो वरतै, गुरमुख आप पछाणे। नाम त्याए तां सतगुर पाई, जो इच्छै सो फल पाई। नानक तिसदा सब किश होवै, जे विचों आप गवाए। सूही महला तीजा, काया कामन अत सवालियो। फिर वसै जिस नाले, फिर सच्चे ते सदा सुहागण। गुर का शब्द सुमहले, हर की भगत सदा रंग राता। हम मैं विचों जाले, वाह वाह पूरे गुर की बाणी। पूरे गुर ते उपजी साच समाणी, रहाओ काया अंदर सब किश वसै। खंड मंडल पाताल

तुझे अराधी दुख पी तुझे त्याई जे भुख दे ता इत ही राजा दुख विच सुख मनाई तन मन काट काट सब अर्पी

आजकल तो भी प्रकृति मनुष्यता अतिथ संबंध के अनुसार कुदरत की प्राकृतिक स्थिति अनुसार देशाड़ स्थल और आकाश का सपना साधन ढाबे बदलाव गर्जना रिंग हिम करके नींद का फरसना कोत बैसाख बसंत रुत धरती आकाश का मौजना यह सब मनुख ने कागल की याद जोड़ते हैं। बसंत में सब तो श्रेष्ठ स्वीकार देना इसमें ऋतुराज भी कहा जाता है। जिथे बसंत चारों पास खेड़ा होंदा है उसे बसंत राज गाया मन में खेड़ा मिलता है। कबीर जी फरमाते हैं मौली धरती मौलिया आकाश घट घट मौलिया आत्म प्रकाश। गुरु अमरदास जी का फरमान है बनस्पति मौली चढ़िया बसंत। बसंत के दिन भाव माघी तो हर दीवान कीर्तन की समाप्ति के उपरंत बसंत दीवार का कीर्तन होंदा है। होली मेले तक वार पढ़ी जाती है। कहते हैं जिस बसंत की वार गा ली वो सदा उमह में रहा है उसका मरदोपना कदे नहीं जाता। इस राग में उही स्वरूप निश्चित किया गया है जो हरिमंदर साहब जी पुरातन समय तो गाया जाता रहा है। सैनिक कीर्तनकार हूं भी गाते हैं इसके नादात्मक स्वरूप सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। आरोह विश्व और पंचम वर्जित हैं उसका वाद्य शब्द और समाधि मध्यम है। गायन समा दिन का दूजा पै रहा है पर बसंत रूप में किसी समय भी इस राग में गाया जा सकता है। राग बसंत शब्द का कीर्तन कर रहे हैं और खेड़ा लिया रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह जी। शब्द की आरंभिक तुक है कछु न जानो तेरी सार और दूजा शब्द पुरातन मनुष्य गा रहे हैं भाई रवि सिंह जी। शब्द के बोल हैं मौली धरती मौलिया आकाश घट घट मौलिया आत्म प्रकाश। पहला शब्द प्रोफेसर करतार सिंह जी है कछु न जानो।

0: नानक निरसौ निरंकार सत एक
1: नानक निरंकार
0: सीतियां तन कहानियां किसे दे विचार बाजारी बाजार मह आए कदह बाजार
1: राम राम।

0: पुरुषोत्तम जात सुनाएंगे बोलो
1: भगवान भौरी पांडे मन पावदे दर्पोल की।

करे भगत आदमी के चाहे अपने समाए जो हुआ हो वो सो जाने प्रभु अपने का हुक्म बचाने किसकी महिमा कौन बखानो जिसके गुण का एक न जानो आठ पहर प्रभु से हजूरे को नाम से जिन पूरे मन मेरे तिनकी ओट ले मन तो अपना तिन जान दे जिन्हें जन अपना प्रभु बचाता सो जान सर्व तो का दाता किसकी सरन सर सुख पावे किसके दर से सब पाप मिटावे अब त्यान से लिखाड़ तिजन की तुम सेवा लाग आवे ज्ञान हो गई तेरा नाम तिजन के पूजे सुधारा श्लोक सतपुरख जन जाने सदगुरु तिस्का ना हो तिसे संस कुदरे नन कर दूंगा अश्वरी सत गुर सिख की करे पटपाल सेवु को गुरु सदा दयाल सिख की कुल गुण मत बल हरे गुरबचनी हा नाम उचर है सतगुर सिख सुंदर कट है गुर का सिख मसाते हट है सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख पटपागी है सतगुरु से का हल पाल सुमारे नानक सतगुरु से को जी नाल सुमारे गुरु के रहे सेवित के रहे गुरु की आगे मन में सहे आप को सत्य जनावे हर नाम रिद सत्य आवे मन भी की हत गुरु के पास ते सेव के कार्य रास सेवा कट होए न कामी जिसको हो साहब स्वामी अपनी कृपा आज साहब करे नाम सो सेवक गुरु की मत रे बीस विश्वे गुरु का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गाथा ने सो सतगुरु जिस रे हर नाव अंक बार गुरु को भाई जाओ करुणा जी का दाता आज कह पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन्म पार ब्रह्म एक आपने के भरम कैसे मिले न जाइए नान कैसा गुरबुट पागी पाइए सफल दर्शन ते सुनीत पर्श जन गरीत संग नाम हृदय पादों की दर गए हृदय सुन कर वचन कन उगाने मन सुन तो पतिया ने पूरा गुर अख्याओ जाका मन पर अमृत देश पे के संत गुंदन सिंह ने पाए नाम जे सार चलाए मिलाए जे भाई कुछ तो तनेक सतपुरुष पूर्ण वेक काहू बो नपम प्राणी गम गोच पुनर्वाणी मेरा आहन वै सुखदाई ताकि चिंद के नर पाई अंक पंक बंधन नित करे चल कम हृदय सिमरे सत बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस पर सार ऐसा प्रजपने ए हो हर स्वामे जन को अमृत सीधे अमृत होए उस पुरुख का नहीं करे बनाव जाके मन पर ते गुमतास आज पैर हर का नाम ले सचिव ले सेवे को दे मोह माया के संग में नहीं पूरे मन में रखे हरा एक अंधकार दीप प्रगाशे नानक परम मोह दुख के नाशे तप्त में ठांड बरताई अनंत के दुख न के पाई जन्म के मिटे में से साधु के पूर्ण फले से पशु का ने तो हो बसे सगल ज्ञान मन से संग से जिसका सा तिन कृपा धारी सा संग जपना मरारी पित पाई चुके परम गगन सुनन कहर हर सर्गुण निर्गुण आप सरगुण प्रियो ही कला साधन सगली मोही अपने चर प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर गुण तू जाना ही कोई सन्मान पे एक होए ओत भू कर व्यारु प्रांग पाए प्रगा साथ के संग रच रचना अपनी का धारी अंक बादान सलिहारी स्लोक साथ में चाले बिन भजन दिशा सगली चार हर हर नाम कमावना नाम केतन सार अष्टपदी संत जना मिलकर विचार एक जन्म नाम उधार अब पाप समीप उतारो चरण कमल विघ्नाय उधारो करुण कारण प्रसो समर्थ दृढ़ का गाहो नामर बात एहो तन पंच हो गो भगवंत संत न करे मल मंत एक आसरा को मन वाहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठुर पावे सो तन हर से वाते पावे जिस सुख को समाचे मीत सो सुख साधु संपरीत ये शोभा को कली फल करनी सा शोभा पर हर की करनी अनका पावी रोगन जाए रोग मिटे अब दराय सर्व धाम में हर नाम धाम जप नाम उधर के प्रमाण मन को वो दो हर के नाए जाए जिस काल का आवे खाए ताको भी न लागे कोई जाके हृदय बचे तो एक अंतासी करना हर नाव से मेरे तेज को पाओ पवन से भूल है आज पवित्र पाए आत्म प्रगाश कित कर जाए बचे बनासी को नानक काटी जम फासी तक विचार कह जन काचा जन्म सो काचो काचा आप गमन मिटे वो सेव आप क्या निगर देव यो रतन जन्म का होय आधार हर हर सिमर प्राण उधार अनक पावन चुकन हारे सिमर सच बेद विचारे हर की पवित्र मन लाए मन मान

0: ordenado.
1: जे कोई कथाकार जो शब्द ही कथा ही नहीं सुना सकता तो कथाकार कादा होया
2: चलो
1: चुटकले सुनाण वाले तो होर बथेरे बथेरे ने बंबई विच मौजूद चुटकले सुनांदे सन
2: चलो
1: पर इनकी कार है सन जिसे जितनी बारी सोदर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच आया है अखर अखर किते न कोई फर्क है पर एक शब्द है जो पहला भी उसके रूप में आया है अखीर से भी उसके रूप में आया है अखीर से ना लिख देंगे ये कि अजकल दो मंडली जानी ये नहीं कहीं दो बारी क्यों आया दो बारी पढ़ने की लोड़ ही नहीं लिख दिता नाल यो श्लोक आद अंत पढ़ना ये श्लोक आद अंत पढ़ना आरंभ में भी पढ़ना है अंत से भी पढ़ना है अखीर से भी पढ़ना है श्लोक आद अंत पढ़ना इन आरंभ में भी हम तुसा सरवण किया है जो इसकी विचार संपूर्ण होगी उदो ही आप सरवण करोगे यो श्लोक आद अंत पढ़ना यो आरंभ में भी पढ़ना आद आरंभ में ते अंत अखीर से भी पढ़ना हाँ ये गोबर बख्शा है साडे मां जी ने साडे परम पिता श्री गुरु अर्जन देव जी ने तो मां द्वारा मां का विरसा सारी औलाद लिए होंगे सारे बच्चों लिए होंगे सारे बच्चों लिए होंगे इसलिए सारी सिखी लिए सारी मनुखता बच्चियों के माताओं लंगर दे विच सेवा कर दिए ने खबोशी नाल नाले बाणी सुनिया करो नाले कीर्तन सुनिया करो ये ना हो गए लाउड स्पीकर लगाने का मंत्र यह नहीं कि लंगर बच्चे अपनी की कहते हैं अपन बातें चल दी रहे तो पता ही ना होगा जो की होया है चलना खो लंगर में अच्छे तरीके नाल इसलिए बनाई गए हैं सदगुरु की खुशी संग की खुशी प्राप्त हो गई पर नाल नाल लंगर छकन वेले लंगर की सेवा करने वेले गुरु ने याद रखने जिसकी कृपालता नाल सानू इन्नी भोजन प्राप्त होंगे इन्नी खाने प्राप्त होंगे ने इनिया दातां प्राप्त होंदिया ने इस वेले वे महापुरशा के समय पक्का भंडारा होना माल पूरे बनने ती तो असं कई दिन तो पूरे पूरे कही जाते किसी परिवार ने चुका ही दिते जलेबियां बननिया लड्डू बनने तरसी वर्तनी यानी घ्यो पैना रात में हदायत करनी अज तुसा एक एक जगजी साहब का पाठ वखरा करना जिस परिवार ने सेवा की थी सेवा लिख के लगी गुरु देते कृपा हर विद्यार्थी में हदायत होंगी सी तुसा एक एक जगजी राज वखरा पाठ करना क्योंकि जिन्होंने लंगर की सेवा की उन्होंने भी भला हो जाए खो पर जिस वे असी लंगर विच दो उधर बह जाते हैं दो उधर बह जाते हैं किसी की निंदा से किसी चुगली करते हैं नाले गुरु का लंगर छकते हैं ना अपना भला करते हैं तो ना सब सेवा करने वाले का भला करनी हाँ जी क्योंकि कोई आदमी सागर विच गोता मार के भी सुका रह जाए प्यासा रह जाए तो फिर कर्मा की गति है डूब कर भी तेरे दरिया में मैं प्यासा निकला मैं फिर भी प्यासे का प्यासा तो खुशक का खुशक रह गया जब असं गुरुद्वारे आके गुरु के कमरे में बैठने की बजाए गुरु की बाणी की विचार करन सुन की बजाए बारों बार ही चले जाते हूँ मैं अंदर आ रहा सा एक नौजवान उच्चे तो हो गए साढ़े छे फुट लंबे पर बूट नहीं सन उतारना चाहते हाथ में उन्होंने कोई काफ़ी वड्डी बोतल पकड़ी हुई थी कहने लगे भाई जी अंदर रख दो मैं डरता सब मैं मिट्टी नाल हाथ मांगने पैणगे मैं क्या तुम आप ही अगे रख आओ चलना खो उन्होंने बाबा जी ने पकड़ा दिती इना भी नहीं कि जो गुरु ने खुद भेद करना है गुरु ने मत्था टेकी है तो शुक्र करिए साहेबा
2: तू बख्शिश कीती सी तेरे बख्शे हुए विचों ये फुल मैं तेरे कदमा ते रख रहा हाँ प्रवान करना। पूजा पावनी नाल सेवा श्रद्धा नाल सिखी सिद्धक नाल ही प्रवान हो सकेगी। तो ज्यादा इस पासे ना जावा जिहड़ा गहना बख्शिया है गुरु पिता गुरु अर्जन देव जी ने असाडे माता जी नूं ते माता जी द्वारा सारी मनुखता संसार नूं सुनी ते गहने विच किहो जिहे माणिक मोती ने उस गहने का किहो जिहा रंग रूप है सुनो उन्हां दे शब्दां जी।
0: ओंकार सतगुर प्रसाद
2: एक ओंकार एक अद्वैत रूप वाहिगुरु ओंकार सबनां दा प्रकाशक सतगुर प्रसाद सतगुरु की प्रसाद कृपा करके प्राप्त होता है उसकी प्राप्ति सतगुरु द्वारा होती है। हाँ जी
0: गौड़ी बावन अखरी महला पांचवां श्लोक
2: हाँ गौड़ी राजनी विच बावन अखरी बवंजा अखर वाली वह बाणी जिस विच बवंजा अखर द्वारा उपदेश दिता हो इसलिए इस बाणी का नाम आप रख रहे हैं गौड़ी बावन अखरी बावन अखरी बाणी का नाम।

0: गुरुदेव दाता, गुरुदेव गुरु रामदास जी का स्टेशन दे, हर नाम उपदेश है, वो हरि दे नाम का उपदेश दे के हरि दे नाम का दान दें दे सके।
1: गुरुदेव मंत्र निरोधरा
0: ते योगी लोग दसवीं द्वार श्वास ठहरा के अपनी इंद्रिया का निरोध दमन कर दे, इंद्रिया रोकन का नाम योग शास्त्र का एक शब्द है जिसमें निरोध किया गया है। करना खोजा मतलब है रोकना, गुरुदेव का मंत्र निरोधरा, गुरुदेव गुरु रामदास जी ने वो नाम रूप मंत्र दिता है जिस द्वारा मैं अपने मन इंद्रिया के ताई निरोधरा रोक लेना कीता है, वश कर लेना कीता है, अधीन कर लेना कीता है।
1: गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत,
0: गुरुदेव का रूप कैसा है? गुरुदेव शांत, गुरुदेव श्री गुरु रामदास जी महाराज शांत शांत स्वरूप है, कभी भी उछाला नहीं है। दुध अमृत है, शीतल भी है, ठंडी तासीर है दुध की, वो मां का होवे या गऊ का होवे, को किसी भी पशु का दुध होवे, दुध की तासीर हमेशा ठंडी, दुध की तासीर हमेशा मिठत वाली होंगी। आ जिहड़ा मिठा पान का असी काम करते हैं ये तो असी आप दुध नू कितने रंगा रूपां विच बदल दिता है। चलना आ एक बिल्कुल चिट्टा यानी दुध नाल नहीं पता नहीं कहदे नाल ज्यादा सफेद करके प्लास्टिक के डब्बे च पाते नहीं मेरा पानी होंगे, चलना बिल्कुल पानी ना गिलास के नाल भी वह कुछ नहीं लगता, ठंडा गिलास भी ठंडा नहीं होंगे, आदमी के अंदर की ठंडा करेगा चलना ना। दुध की तासीर ठंडी, दुध का रस मिठा, इसे ही तरह गुरुदेव शांत, गुरुदेव श्री गुरु रामदास जी महाराज शांत स्वरूप हैं, कदे भी वो अशांत नहीं। बाबा पृथ्वी चंद ने जदों भी गलत वर्ताव किया हमेशा शांत वर्ता दे। एक बारी जदों ज्यादा ही संगत में बोल कबोल बोलन लगे, गुरु पिता जी के सामने सवाल जवाब करन लगे, तो इन्हें जरूर समझाया ताहे पूत जगरत हो संग बार, जिनके जने बडीरे तुम हो तुमसे जगरत पार। गुजरी महला चौथा, क्या खिमा करना सारंग महला चौथा, प्यार मखो काहे तू जगरत हो संग बार, क्यों जगर दे। ये एक पंक्ति द्वारा सारी मनुखता समझा दिता, सारिया पुत्रा समझा दिता, बाप नाल झगड़ा करना पुत्रां लई पाप है, पुत्रां लई गुनाह है। अज दी जनरेशन लई किड्डा वड्डा उपदेश है, काहे पूत जगरत हो संग बाप, जिनके जने वडीरे तुम हो तुम से जगरत पाप। ये झगड़ा करना पिता नाल गुनाह पाप है, पर शांति नूं हथों नहीं जान दिता। भावें पृथ्वी चंद कुछ कहते कुछ करते कुछ कमाते रहे, पर कदे आपने शांत वातावरण अशांति के रूप में तब्दील ही नहीं होन दिता। इस वास्ते हजूर फरमाते हैं कि देखो गुरदेव शांत, गुरदेव शांत स्वरूप हैं,

0: सत्य हो गया पर गुरु रामदास फिर सत्य है क्या मे गुरु रामदास फिर सत्य स्वरूप है क्योंकि तेरा है ही सत्य वो असत तो हो ही नहीं सत्य। इसलिए गुरुदेव गुरु रामदास जी महाराज सत्य स्वरूप हैं शांत स्वरूप हैं सत्य स्वरूप हैं शांत सत्य बुद्ध तो बुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं बुद्धि अंदर ज्ञान है बोध स्वरूप यानी ज्ञान स्वरूप ने गुरु रामदास जी ने किसी पासों ज्ञान प्राप्त करने की लोड़ नहीं पड़ी। कितने लोग आए उन्होंने ज्ञान देने वास्ते योगी मुड़ मुड़ के आते सन क्योंकि इस गुरु नानक देव जी के धर्म की सिखी की परंपरा में गुरु रामदास जी ने राज योग के रूप में तब्दील कर दिता क्या लख योग दोनों प्रत्यक्ष विखाई देंगे सन उन्होंने वर्ताव तो दुनिया ने छोटी सुल्तान कहती सी सिद्ध सिद्ध खेलते सन सिद्ध खेलते सन जरूरी है क्योंकि जिस वेले किसी ने सोहने कपड़े पाए हो पर कितने अचानक सुहा लाने वाले के कोल आ बैठे तो खिलेगा वो चिड़ेगा अंदरों तो शर्म महसूस करेगा भी उन्हें सोहने कपड़े पाए ने यह सोहना लगता मेरे नालों ज्यादा अच्छा लगता है मैं तो एवं सुहा ही मान ली थी क्या लखो तो यह सिद्ध खिड़ते सन सिद्ध खिड़ते सन वहसाम वहस करने वास्ते होंगे सन पर गुरुदेव ने उन्होंने आप ज्ञान दिता है उन्होंने तो ज्ञान लिता नहीं है इसलिए बुद्ध बुद्ध स्वरूप ने ज्ञान स्वरूप हैं गुरुदेव सांत सत्य बुद्ध मूर्त यानी ज्ञान की वो तस्वीर ने ज्ञान की मूर्ति हैं ज्ञान का रूप हैं जी
1: गुरुदेव पारस परस परा
0: गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव पारस हैं कि गुरुदेव गुरु रामदास की पारस की परस छो पारस की छो तो ही परे अगे है वो पारस तो भी महान हैं महापुरख सानू पढ़ाया करते सन जो भी ज्ञानी क्लास के विद्यार्थी होंगे उन्होंने पहले एक छोटी जी पुस्तक पढ़ाते सन जिमें बाल उपदेश कह दीए कैदा कह दीए और पुस्तक पढ़ाते सन ताजो थोड़ी जी सूझबूझ प्राप्त हो सके जिक्र आता है पास मैं और संत मैं बदो अंतरो जान वह लोहा कंचन करे वो करे आप समान विचार माला प्याला खो साधुओं में तो पास फर्क है पास के लिए वो अठ धातों सोना बना पर महापुरख के पास कोई आ जाए रब रूप बना देंदा है सोना हीरे चांदी तो वे कदमों में रोंदे रहेंगे प्याला खो अज भी समाज में भी हम असी वड्डी जाति दे असी वड्डे हाँ तुसी छोटी जाति दे तुसी छोटे हो तुहानू पहला सत श्री अकाल कहनी चाहीदी है तुसी असी वड्डे भी होए तुसी छोटी जाति वाले हो कुछ लोग होर कह वड्डियां चुकियां जातियां वाले पर पुछो गुरु अर्जन देव जी तो रविदास ते आए प्रभ अनूप गुरु नानक देव गोविंद बसंत महला पंजवा अष्टपदिया रविदास किस रूप में दिखा है रविदास की हो गया है क्यों स्वामी रामानंद जी की शो का असर है प्याला खो कबीर की बड़ी मुश्किल हो गई भी नाम लेना है तो स्वामी रामानंद तो लेना बड़े बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी भी सन पी डब्ल्यू डी के आफिसर भी सन पटियाले उन्होंने मैं बड़ा जोर लगाया बड़ा जोर लगाया तेन उन्होंने संतों को ले चलना हाँ तेन कहे तो उन्होंने संतों को ले चलना हाँ तेन तू कहे तो उन्होंने संतों को तेन छड़ आता हाँ तो मैं क्या जी जे जावे संतों को पिंडर वाले को नहीं जाव होर किसी पास असा नहीं जाना भी संत असा चुन लेने जिन्हें पास जाने पर चाहते हाँ कि घरों नसीए तो किए नसीए जाइए तो किए जाइए अचानक सफर करद मिल गए रेहन ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਰਾਮਾਨਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਾ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਮ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸਵਾਮੀ ਤੋਂ ਹੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਸ ਘਾਟ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਲੇਟ ਗਏ, ਰਾਤ ਲੇਟ ਗਏ। ਚਲੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਚੱਲ ਖੋਲ, ਅਮੂਮਨ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਚੱਲ ਖੋਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਖਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਚੱਲ ਖੋਲ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਚੁਣੇਂਗੇ ਜੀ ਚੁਣੇਂਗੇ, ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖ ਦੌੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨਾਥ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਚੱਲ ਖੋਲ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਈ ਜਾ, ਉਦੋਂ ਇੰਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਦਇਆਲਤਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਛੋਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਬਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ, ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਚੱਲ ਨਾ ਖੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਲੱਗਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਉੱਠ, ਰਾਮ ਕਹੋ, ਰਾਮ ਕਹੋ, ਰਾਮ ਕਹੋ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਡਰ ਡਰ ਹੋ ਗਏ।

सिखे पाई गुरु दी कृपा नाल परमात्मा आप मददगार बनता है। गुरु दी मेहर नाल सदा थिर रहन वाले प्रभु दी सदा थिर रहन वाली सिफ्त सलाह।

प्यारे श्रोतियो श्री अकाल तख्त साहिब दा इतिहास सिख पंथ दे बानी धन धन श्री गुरु नानक साहिब जी दी छेवी जोत गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे समय नाल जुड़िया होया है। इस दा दूसरा नाम अकाल बुंगा भी है। मेरी अते पीरी दे इस अस्थान दा नींह पत्थर 15 जून 1606 नूं श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने रखिया अते इस तख्त नूं प्रगट कीता सी।

जे खोटे मन नाल तीर्थां ते नौन तुर पए ते शरीर विच कामा दिक चोर भी टिके रहे तां नौन नाल एक हिस्सा भाव शरीर दी बाहरली मैल तां लै गई पर मन विच अहंकार आदिक दी दूनी मैल होर चढ़ गई। तुम्मी वाला हाल ही होया, तुम्मी बाहरों तां धोती गई पर उस दे अंदर निरोल वेस भाव कुड़कतन टिकी रही। भले मनुख तीर्था ते नौन तो बिना ही भले हन, ते चोर तीर्था ते नाके भी चोर ही।

इस अकाल तख्त साहिब दे फलसफे विच मेरी अते तेरी इको थां अते इक जुज विच इकट्ठियां हन। ए इस फलसफे दा आदर्शिक शिखर है। ए सारे नुक्ते लंबी तफसीली तकनीक मंगदे हन जिस नू विचारण लई इक वखरे प्रोग्राम अलिकण दी लोड़ है। सिक्खी दे घेरे विच कुछ इंस्टीट्यूशन अजिहे हन जो इस फलसफे दे सोमे भी हन ते इसकी ताकत भी हन। ए इंस्टीट्यूशन हन गुरु ग्रंथ साहिब, अमृत, अकाल तख्त साहिब, पंच प्यारे अते सर्वत खालसा। उंज अजोकी हालत इस विच श्रोमणी अकाली श्रोमणी अते दिल्ली अते होर गुरुद्वारे कमेटियां नूं भी पंच दियां नवीआं इंस्टीट्यूशन विच शामिल करन दी कोशिश कीती जांदी है। पर साडी निगाह विच ए इंस्टीट्यूशन नहीं बल्कि आर्गनाइजेशन संस्थावां हन। अकाल तख्त साहिब दा फलसफा दुनिया विच सब तो वध लासानी है। दुनिया दे किसे धर्म किसे कौम कोल ताकत दा एहो जिहा मरकज नहीं है। गुरु साहिब ने ए इक अजही इंस्टीट्यूशन प्रगट कीती है जिस नाल सिख कौम नूं मीरी पीरी दी हस्ती दा मरकज अते दरबार हासिल हो गया है। अकाल तख्त साहिब नूं अपना इस मनन वाला सिख अपने आप अकाल पुरख दी फौज दा हिस्सा बन जांदा है। अकाल तख्त साहिब सिख दी शान है, आन है, मान है ते जान है। इस तख्त नाल संबंधित होना अकाल पुरख दी जानी उचेरी दुनिया दा शहरी होना।